मैल जिन पर अंदर बाहर गुंदरते पड़े संसार तेनू लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप कर जाए परवार है किसे के रिबाज सत्य नाय दरबार पर खर्च।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अरवरण जात अरपात नहन जे रूप रंग अर रेक पे को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जाय कोट इंद्र इंद्राण साहान गुणिजय त्रिपावन महीप सुर नर असर नेत नेत बण तृण कह सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जिह सतगुर सिमरंत नैनक तिमर मिट है खैना जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुरबल भाण मिल संगत धन धन करह जे सतगुर लग प्रपाई है सो सतगुर सिमरह नरह सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी अवरण सूजा दूजी ठहर हार प्रयोता द्वारी लेखा छोड़ लेखा छूट है हम निर्गुण लिहो अबारी साध बखसिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछ परे राख लिहो इह बारी चिंत भवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक कर के गोले सो कहो टल गुर सेवी आय अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे आय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसह कुरसह चटियै तुद जठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजण सचा पातशाह सिर साहां दशाह जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा बेसाह सजण सचा पातशाह सिर साहां दशाह जिस पास बैठे आ सोही है
सबना दाविसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबाजी जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही हरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा ही अरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे माना भज राम नाम सब अर्था गुरपुरा हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा रहा बिन गौर मूड भय है मन मुख ते मोह माया नथ पाता तिन साधु चरण न सेवे कब हूं तिन सब जन्म अकथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफलियो जन्म सनाथा मोका कीजा दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा।

हम अंधली का गोर अंचल दीजा जन नानक चल है मिलन था। हम अंधली ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल मार्ग पंथा। हम अंधली का गुर अंचल दीजा जान नानक चल है मिलन था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जत श्री महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिण लाथ। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत साड बिखा बिख खाय माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगा सब निवाना हर सज्जन दावन लगिया किसान दे बाना। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगा सब निवाना हर सज्जन दावन लग्या किसान दे बाना। माणक मोती नाम प्रावा उन लगा नाही साना। रंग सभे नारायण जेते मन पावन जो

पौड़ी बढ़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंगने कु ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर नंद बधाई तुद कर मान महत्ता ते जापना आप जर

हमारे दुष्ट सब तुम कावहौ, आप हाथ दै मोहे बचावहौ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब

असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलीश करो रण काता जे अस तुज ताव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होवै मारे पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी।

ब्राह्मण खत्री शब्दों सूर शब्दों शूद्र शब्दों प्राकृत है सर्व सदम एक सदम जे को जाने पे ओ नानक पता का दास है सोई निरंजन देओ महला दूजा।

एक ओंकार ठाकुर प्रसाद सिमरन होई पुरख अचल अविनाशी इस सिमरत दुर्मत मालनाशी ठाकुर चरण कवल रिद तारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुर रामदास घर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जनमत गो

0: காத்துக்கு ஒரு தாங்கல்யா கோரு அழுக்கணு காரு கோரு ராமதா காரு கோரு ராமதா அப்பறம் பரு
1: खेल कूड़ो पियो हर राय संतोष माचरे हो विमल बुद्ध सतगुर मानो आजो नहीं संभव्यो सो जस कल कर।

अमर सतगुर थिर के ओ अमरदास अमृत शतर गुर रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिको नैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिको नैन।

परमेश्वर के रंग रंगियो पासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परम पर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में।

बोल दिवाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय।